0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।
2: साई साई

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: नबी हक।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: हो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हाँ बुड़ी 331 5786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाप्त फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाप्त।

देखता हूँ, आपको देखता हूँ दिल खुश होता है, पीछे फिर बड़ा नर्व। अब आपसे गुजारिश है, जो खामोश बैठा हो उससे पूछ लें कि मौला अली का नारा लग रहा है तेनू खैर ते है, क्यों खामोश बैठा है? थोड़ा जा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, सलामत रहें मिलकर। हाँ।

लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद।

आशिक बैठे हैं, अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ जी, जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबा बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मोराली के नारे का जवाब देना है। बाबा बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई में की आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

हुकूमत पेट्रोल क़ीमतनि में हिकु भेरो करे छॾियो। पेट्रोल 13 रुपया 18 पैसा ऐं हाई स्पीड डीज़ल 13 रुपया 80 पैसा फी लीटर महांगो। पेट्रोल जी नई क़ीमत 310 रुपया 71 पैसा ऐं हाई स्पीड डीज़ल जी नई क़ीमत 323 रुपया 30 पैसा फी लीटर मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी।

0: चाइल्डहुड टीचर्स। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियां पास हुई हैं, 500 के करीब जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं, इनको विद इन 15 डेज के जाए, विद इन 15 डेज। और तीसरा जो इशू था, जो मेन इशू था, जेएसटी, जेईएसटी और पीएसटी वाला, जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसकी वजह से कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट से, कि लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
1: मैं ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके, उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उसके सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों किया।
2: सिंध में उस्तादन के बर्थन बाबत जुड़ियल पार्लियामेंट्री कमेटी जो जूनियर स्कूल टीचर लाए 50% मार्क्स खड़ उम्मीदवार के भर्ती करने जो ऐलान। अर्ली चाइल्ड टीचर के बर्थन में छोकर के अवलियत देने जो फैसलो। पीएसटी जेएसटी की वेटिंग उम्मीदवार के मुस्तकबिल बाबत को फैसलो न थी सको। स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ए बियन मेंबर की शिरकत। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त जूनियर उम्मीदवार के भर्ती किया वेंदो। अर्ली चाइल्ड टीचर की टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकर के 15 डीन अंदर ऑफर लेटर। एएसटी ए पीएसटी उम्मीदवार लाए अदालती फैसलो अची वो आए, उन बाबत कानून वारे खाते का मशावरत कई वेंदी तो उन लाथो कर सकजे। सरदार शाह चयो त तालीम खाते के रोजगार न पर तालीम जो जरियो बनायण पवंदो। कमेटी फैसलो कयो आए त जेएसटी ए पीएसटी में फ्रेश ग्रेजुएट्स के मौको दिनो वे।
3: सिंध के शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाया वे मुसलसल असा बेवकूफ़ बढ़ाया पे वे असा के बस तारीख के तारीख दिनी वे थी
4: बोर्ड के ना मन सीपी के ना मन तो रोड से वेठा अना छा कर सकूं
5: बिन दिन के अंदर असा नायब इंशाला बिलावल हाउस के बहरा जो पूरा अमन धर्म में वेही रहा।
2: पार्लियामानी कमेटी असा लाए ठही उनमें असो जिक्र ही न थो। कराची प्रेस क्लब बहरा धरणो हणी वेठल पीएसटी ए जेएसटी के वेटिंग उम्मीदवार जो सख्त एतजाज। केतरी नारियों केटीएन न्यूज से गाल बोल दौरान लुड़क लाड़े वेठियों। बिन डीन का बिलावल हाउस आडो धरणे जो चिता। पीएसटी ए जेएसटी के वेटिंग उम्मीदवार जो चवण हो त कमेटी में वडी उम्मीद हुई पर आयूस कयो रुगो डट ए तारीख मथा तारीख डिनी पई वे। हाँ अस आपघात क्यों
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
7: सुनते रहो GAFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तर रहा आयो
10: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
10: हाई परे परे ताई बुधो वींदड़ FM मात
9: खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर हिन नंबर ते राबतो कंदा
9: 0331252576।
10: जी हाँ बुड़ी 331 5786
9: GAFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेक्स्ट सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

बीहर पढ़न बियाई। बल बल पढ़न दिए यार सजन दी हूं दिसा को जुदाई। मुस्लिम विचों का फर्थी वन ए केरी हूं दी अदाई। यार मुस्तफा जैसी

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत ग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो कीअं छो ऐं छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड बीमार थियो इहो किसो तव्हांखे आसे ई करे थो ॿुधायां आश्क वेचारो जड बीमार थियो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे चई त मूंखे पंहिंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउं उते मरंदुसि जो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो पुले कांधी थिए

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी अख्तियारन से राबता करे छिकताण खत्म करने ते गालबोल कई है, जै बाद बिनी मुल्कन एक बे ते हमला भी बंद कया है।

0: ईरान मूंखे क़त्ल कयो या क़त्ल करण जी साज़िश कई त 1000 मिज़ाइल ईरान ते फायर करण लाइ तयार आहियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ज़रूरत पवण ते अमेरिकी फ़ौज खे ईरान खे मुकमिल तौर तबाह करण जूं हिदायतूं बि डि॒नियूं वयूं आहिनि। ईरान खे साज़िश रोकणी पवंदी।
1: ईरान ॻाल्हियुनि जी दरख़्वास्त बाबति अमरीकी सदर जी दावा रद्द करे छॾी। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्ची चयो आहे त ईरान मफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीकी नाणे वारी वज़ारत शिक नंबर 9 जी भञकड़ी कई आहे। अमरीका सां मुआहिदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
0: छहनि महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आम्हूं साम्हूं। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान, इरफान अली कीरियो, मोहम्मद हारून खोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर में मुक़ाबिलो पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे। सिटी कोर्ट में 2 डिजिटल पोलिंग स्टेशन ऐं 90 डिजिटल बूथ क़ाइमु कया विया। 90,000 खां वधीक रजिस्टर्ड वोटर्स बायोमेट्रिक में घटिजी 5,500 थी विया आहिनि।
1: ऐं टंडो गुलाम हैदर में फुलेली कैनाल मां निकिरंदड़ शाहवाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। हैदराबाद बदीन रोड ते धरणे सबब गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि जो चवण आहे त पाणी न हुअण सबब पोखियल बेजारो सड़ी वियो आहे। पूछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहे
4: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 3135525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

निंदो वासी नौजवान कराचीअ में गुज़िरियल पंज ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम संदसि वारिस सख़्त परेशान ॻोल्हा में मदद जी अपील नौजवान जे वारसनि जो चवणु आहे त शौकत मलाह कराचीअ में फैक्ट्रीअ में मज़दूरी कंदो हो ॻोठु अचण दौरान लाड़के मां गुम थी वियो आहे नौजवान जी ॻोल्हा में मदद करे परेशानी ख़तम कई वञे।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
1: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। स्पॉट्स को करें और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: फिल्म 90.4
3: छावा पेंजे कारोबार
4: तो पोए जिए नानजीर मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जिए एफएम मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लैण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576
4: जी हाँ 2315525786
3: जिए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर
1: गोटा FM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: बलोचिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन शोबान जारी वधी कन्नम खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ऑपरेशन दौरान मारजी वयल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधी 52 थी वयो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पाक फौज एफसी ए पुलिस खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी रखियो आहे। ताजन कार्रवाई में वधीक नव खारजन के मारे वयो। खारजन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाइयों भी कयूं पई वन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान बेन ऑपरेशन में हेल तई 88 दहशतगर्दन के मारे वो है। घरू वजीर मोहसन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सिस के भेटा पेश। मोहसन नकवी जो चवण हो तो मुल्क में लिखल समूरन दहशतगर्दन के खत्म किया वो।
1: छिकटाण में बाद अमेरिका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकरर करे छिया। यूएसएस इब्राहिम ए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश के ईरान वेझो मुकरर कयो वयो। सेनेट का मूजिब अमेरिका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त करे रहा आहिनि। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फौज के दुश्मन की चुरपुर ते नजर आहे। फौज मुल्की सलामती ए अवाम के तहफुज के यकीनी बनाए रही आहे। ईरानी कौम के पेंजी फौज ते फखर आहे।
0: ईरान ए अमेरिका विच में गालिन जो ईंदड़ दौर स्विट्जरलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मूजिब पाकिस्तान सऊदी अरब कतर ए मिस्री अख्तियार अमरीकी ए ईरानी अख्तियार से राबता कर छिकटाण खत्म करने ते गालबोल की है। जै बाद बिन्हीं मुल्क एक बे ते हमला भी बंद कया है।
1: मुखे कतल कयो वने त ईरान के धरती तां मिसारे छजो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फौज के हुकुम। न्यूयॉर्क टाइम्स के डिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सालन खां मूंखे निशानो बणाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरान जेकॾहिं मूंखे क़त्ल कयो या साज़िश कई त फौज खे सख़्त जवाब ॾियण जो हुकुम ॾेई चुको आहियां। अमेरिकी फौज ईरान ते 1000 मिज़ाइल

0: कल हलवा पूरी मंगवाते हैं।
1: इतना अनहेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा।
2: ये तो तेल तेल की बात है।
3: डालडा इस 100% प्योर कॉर्न ऑयल में कुदरती तौर पर शामिल है फाइटोस्टेरॉल्स, जो दिल को बैड कोलेस्ट्रॉल से बचाए, तो बनाए अब हार्ट हेल्दी वही जायके के साथ। डालडा कॉर्न ऑयल, सिर्फ हेल्दी नहीं हार्ट हेल्दी, जहां मामता वहां डालडा।
4: महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडू जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच, जीएम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आमू साम्हूं। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद अवान, इरफान कीरियो, मोहम्मद हारून खोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर शर्म में चोटी जो मुक़ाबिलो। पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे।
5: टंडो गुलाम हैदर में फुलेली केनाल मां निकरंदड़ शाहबा में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। आबादगारनि हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो आयो। आबादगारनि चयो त पाणी न हुअण सबब पोखियल वेझारो सड़ी वियो आहे, ज़मीनूं बि सुकी ठोट थी वियूं आहिनि, पोछड़े ताईं पाणी पहुचायो वञे।
4: मीरपुर माथेले में हाणे गाॾीअ खे क्रॉस करण तां पोरे तके तशदुद जो निशानो बणाईंदड़ वॾेरे ख़िलाफ़ केस दाख़िल। वॾेरे हाजी ख़ान महरवारी फिरियाद ते केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस वॾेरे खे गिरफ़्तार करण में मुकमल तौर ते नाकाम बणियल। गाॾी खे हॉर्न ॾियण ऐं क्रॉस करण ते वॾेरे हाजी ख़ान महर फहद लगारीअ खे तशदुद करे गाॾीअ सां गेलियो हो। वॾेरे हाजी ख़ान महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरे खेस माफ़ बि कयो हो। मीरपुर माथेलो जी अदालत पारां नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाणे ते वॾेरे मथां केस दाख़िल कयो वियो।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: सिंध के माथे का झूमर
8: GAFM 88 नेटवर्क,
9: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
8: सुनते रहो GAFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
11: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
11: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
11: जी हाँ, 2315525786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क,
11: सिंध जो आवाज।

फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने तो खूबसूरत थियन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर, चाहतों की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागते जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से दर्द तक, उनसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़का के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुके हैं जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों से सुननी है और बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। तो रेडी शेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए हमारे साथ साथ मजे करने के लिए और साथ ही साथ खूबसूरती के राजों को जानने के लिए। और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं, सो लिसनर्स प्रेजेंट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एन यू डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे

मौजूद है। सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जरा आप अपनी हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, हालत उम्मीदन शदीदन को बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ हम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि हमारे पास पुटे हैं। तो बिल्कुल इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं और इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसा हाल आए बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्धर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नात के साथ। तो बहुत प्यारी सी नात और कलाम सुन लेते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं YJH & D Skin Beauty Show, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है YJH Beauty Products & D Skin Beauty Products के तावन से। आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक का।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम अल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट लगाने की उम्मीद आपने ऐसा है कि पाली हुई है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भाई बहुत ना ऐसे होते हैं कि हम ये चीज आगे जाकर करेंगे ये चीज, हाँ उनको ये सोचने में जो है वो जमाने लग जाते हैं। तो ऐसा मत किया करें, अगर आप कोई चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं लेना चाहते हैं तो अपने आप को इतना तरसाया मत करें, क्योंकि जब आप अपने आप को इतना ज्यादा तरसाएंगे तो जिंदगी जो है ना से रूठ जाते हैं। तो खुद को खुश रखने के लिए जाहिर सी बात है खुद को थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो ना वो रिवॉर्ड्स दिया करें, और उसके साथ साथ जो है ना आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया करें। ओके जी, तो अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताएं कि जब आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं और आप लोगों के हाथ से बढ़ने वाले हैं, तो प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स पता है कि जनाब कितने अच्छे अच्छे और कितने शानदार मौजूद है, जैसे कि आप लोगों को हर तरह का इसके अंदर जो है ना वो प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाना चाहते हैं, एक्नी प्रॉब्लम है, नाइट क्रीम नहीं आपको अच्छी वाली मिल रही है, साबुन लगाना चाहते हैं, फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह का प्रोडक्ट जो ना वो मिल रहा है। तो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अगर ऐसा है कि परेशान है अपने एक्नी को लेकर, दाने आपके चेहरे पर काफी ज्यादा आ चुके हैं, और गर्मियों का मौसम जब भी आता है ना तो गर्मियों में ये चीज तो है भाई, जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम होता है ना उनके लिए गर्मियां जो ना वो बित होती है, क्योंकि उनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और गर्मियों में तो ये ऐसा है कि भाई जैसे समझ लें कि एक्नी चुका है, तो अगर आपको भी एक्नी प्रॉब्लम है और आप ये सोच रहे हैं पास कोई अच्छा वाला एक्नी का प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार किया गया है, जिसके अंदर आप लोग मिल रही हैं। और आप लोगों को जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के चेहरे के जो एक्नी है ना वो खत्म हो जाते हैं, और ना सिर्फ एक्नी खत्म होते हैं बल्कि एक्नी के निशानात खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान हो, कोई बचपन में आपकी स्किन जो है वो थोड़ा कोई जल चुकी थी, या इस तरह का कोई जलने का निशान है, कोई चोट का निशान है, या कोई इस की आप भी रिमूव करना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से खत्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल आपकी स्किन जो है ना वो क्लियर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। और ऐसा नहीं कि अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप अकेले कर सकते हैं, या इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ज्यादा ही भाई आप लोगों को एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, ऐसा वो कोई सीन नहीं है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करने के तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है। आप बस अपना जो है ना फेस वॉश करते हैं मैं पता क्या बोलने लगी थी आप अपना सेल फोन उठाएंगे नहीं भाई, आप अपना फेस वॉश करेंगे। और वाइटेश ब्यूटी सोप अगर आप लगाना चाहते हैं तो सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश लगाएंगे। अपना फेस अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना वो अपने चेहरे पर लगाना स्टार्ट करें, जहां जहां पर निशान आते हैं, जहां जहां जो जो आपके चेहरे पर मसले उनको रिमूव करना चाहते हैं वहां पर आपने अप्लाई कर देना है, और बस आप सुकून से जो है ना वो सो जाएंगे। आप ऐसे दिन रात में भी लगा सकते हैं, जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा वाले एक्नी है ना तो वो दिन में भी लगाएंगे। तो बिल्कुल जी, टू टाइम्स अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा, और उसी के साथ क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाइटेश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, और वाइटेश लवली क्रीम अगर आप लगाएंगे तो भाई मैं यही आप लोगों को बोलूंगी कि वाइटेश लवली क्रीम जैसी कोई फेयरनेस क्रीम आपने अभी तक नहीं इस्तेमाल करी होगी, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर फेयरनेस की क्वालिटीज हैं बल्कि इसके अंदर आप लोगों को जो है ना ये एडवांस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, और ये विटामिन से भरपूर है जनाब, क्योंकि रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से भरपूर है, इसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल हैं जनाब, और उसके अलावा इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि ये उन लोगों के लिए तो परफेक्ट है जो डेली बेसिस पे कोई जॉब करते हैं। तो कोई भी अगर आप जॉब करते हैं आपको सुबह सवेरे जाना पड़ता है, और अगर आप खवातीन हैं आपको मेकअप करना पड़ता है, तो मेकअप से बचने के लिए और गर्मियों के सीजन में खुद को जरा महफूज रखने के लिए आप वाइटेश लवली क्रीम का इस्तेमाल

बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रही है जिसका नाम है व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए और करते रहिए। टीम शे कहते हैं कि सिलेक्ट कंदा सी छो जो दोस्त आई भी ॾींदो आहे पखो भी हणंदो आहे कचहरी भी कंदो आहे अकेलो इंसान आइसक्रीम त खाईंदो पर अकेलो बोर भी थींदो। सही आ भाई। अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुख्य खबर हुई तमाम के ही तो खबर होंगी आए सब। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे ओके जी सकरन से आप हमारा शो सुन रहे हैं वेलकम करते हैं आपको और शबीर मलिक हमारे साथ हैं। शबीर भाई आपको खुशामदीद करते हैं। नितिन कहती है चाहते है कि चंदा दोस्त मुझे दोस्त चाहिए अली और चाचा नंबर प्रोग्राम में बुधाई वे तो इन नंबर से तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से या वरी तुम उन्होंने ऑर्डर कराए सोता ठीक है। सो अगर मचक्रिया का तो रहने दे बाकी अगर तुम सीरियसली घुराने चाहो था तो इन नंबर से राबो कर घुराए सो था। और नितड़ी कहती अच्छा जी तुम ठंडी हो मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ओके ए मंसारी कहते छो जो आइसक्रीम वारो ही दोस्त आ खा रही ऑलवेज वाह वाह यानी कि दोस्त भी कहो था तो आइसक्रीम वारो। हाँ भाई तरक्की या तरक्की बो ओके जी। शजर अब्बास हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम एंड बोला अस्सलाम मदद कहते हैं क्या सिद्रा जी आप कैसी हैं शो इज सुपर हिट। मुसव्वर अब्बास लाशारी फ्रॉम राजी देरो मेरा दोस्त है बासित अली खान लाशारी। ओके जी आप भाइयों को वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया राजी देरो से आप हमें सुन रहे हैं। उनका अलावा प्रेमचंद भाई है वालेकुम अस्सलाम भाई मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। अच्छा अच्छा चो किशोर भाई जी दोस्त का धोखो खाधो समझ उनके मानो जी समझ को ना आए बिल्कुल यही गाल है मानो जी समझ हो जाए अगते न हो जाऊंगा और कहते हैं कि तुम मेरे हो इसे जिद ऐसी जिद हम कभी नहीं करें हमारे हैं ये हम पूरे हक से कहेंगे वाह वाह। ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। हजार भाई कहते हैं कि हम आपके साथ साथ हैं शो में गुड शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह थैंक यू सो मच हजार भाई। और जी दर्द दिल कहती हैं कि छोड़ो सब वादों को कस्मों को इरादों को

रवि जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप सुन रहे हैं यहाँ पर साथ की आवाज में। एक बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम साथ का गाना भी सुन लेते हैं। और साथ साथ अरे कोशिश तो कीजिए, आज थोड़े सैड गाने फरमाइश मत कीजिएगा।

अच्छा, मेरा मूड खराब है तो मैं आपका भी कर दूंगी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? वैसे हाँ, ये बात है, अगर इंसान का मूड सही ना हो ना तो वो कुछ भी बोल देगा आगे से, तो सही बात है, डरा करे मुझसे। अच्छा आदिल, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए जरा।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। और साज जो है ना वो यानी कि बचपन से लेकर ये मेरे फेवरेट है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से मैं साज के गाने इतने ही पसंद करती हूँ जितने मैं आज करती हूँ। ऐसा है कि मेरी जो पसंद है ना वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे लोगों की पसंद तब्दील होती रहती है ना, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। अच्छा नदड़ी कहती है ये सॉन्ग मैंने अपनी कजन की शादी में प्ले किया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था बट मैंने फुल एंजॉय किया था। ओके और ये इसके बारे में क्या ख्याल है?

अब ये गाना सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा उस मूवी की वाइब दिला रहा है जिस मूवी में, यानी कि जिस मूवी का नाम ऑब्सेशन है, वो भी ऐसे विश मांगता है तो थोड़ा काम इधर उधर हो जाता है. तो ऐसा है कि मैजिक की बात आजकल जो है ना, वो मर्द समाज में पूरा डर का माहौल है.

हैं भूरो भुट्टो, तो वो शौक से सुन रहे हैं तो कि मैंने जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क तरक्की में, हाँ भाई ये थोड़ा डीप हो गया लेकिन

0: लोगों में सुन रहे हैं वाइट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है ये हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि भाई जान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन
1: सुनेंगे नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: जो ऑपरेशन शोभान जारी वजह एफसी ए पुलिस जो खारजिन खिलाफ ऑपरेशन जारी है ताजन कार्रवाई में वधिक जन्म भेड़ो कयो वयो खारजिन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई भी 5 जुलाई का जारी मोहसन नकवी चयो तो मुल्क में लिखल समूरे खत्म कयो वेंदो

0: छिकताणवे बाद बाद अमेरिका जहाज बर्दा एच बुश के इकरार कयो वयो सेनेट का जा
1: ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ दौर इम्कान अमेरिकी मीडिया कतर ऐं
0: न्यूयॉर्क टाइम्स खे चयो आहे त ईरान सालनि खां मूंखे निशानो बणाइण जी आहे कतल कयो या पवंदो
1: का बि जंग ईरान जे हथियार फिटा करण सां ख़तम न थींदी पोइ ते कॾहिं बि न मुआदो टुड़ियो त ज़िमेवारी पाण स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ जो चवण हो त जंग लाइ हर वक़्त तयार रहंदड़ मुल्की अमरीका सां मुयसर ॻाल्हियूं करे सघे थो ॾेही वज़ीर अब्बास राखची
0: ॿिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं ॿिन्ही अॻवाननि
2: आप सुन रहे थे FM नेटवर्क पर केटी

0: आयो
1: ओए जी एफएम 94 मातली बड़ो एफएम रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेकल
1: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

ओके जी, तो आप ये सोचते ना कि खूबसूरती कहाँ से मिलेगी, खूबसूरती कैसे हासिल करेंगे, तो भाईजान जब तक आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपको कैसे पता चलेगा कि खूबसूरती आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो मैंने पहले आप लोगों को वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सो फिलहाल आप लोगों को बताएंगे जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के बारे में। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा होगा, या फिर कौन से लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर लगाना चाहें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट भी आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में आप लोगों को जो है ना वो सिर्फ दो, यहाँ पर ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। यहाँ पर जो है ना सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट जो है ना इनके बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट में ये दो प्रोडक्ट आए हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं, डी स्किन फेस वॉश लगाना चाहते हैं, तो मजे की बात आप लोगों को बताती हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है, ये सोचेंगे भाई कॉमन जिस तरह की भी क्रीमें नाइट क्रीमें होती है ये क्रीम भी वैसी होंगी, तो आप लोगों को पता हो कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ एक क्रीम है। इसका जो इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कितना शानदार और कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल। ये जनाब आपको पता हो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटामिन बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार, लोगों के चेहरे के डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपके चेहरे की डलनेस हो या फिर आपकी स्किन पर जो है ना काफी इस तरह का मसले आ जाते हैं जो कि दूर किए भी नहीं किए होते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपने बहुत से प्रोडक्ट लगा के देखे लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ज्यादातर आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है या सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या करें, हमारे चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, आंखों के हल्के बढ़ चुके हैं, मसला आ चुका है। तो भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे तो सेंसिटिव स्किन वाले लोग है ना परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम प्रोडक्ट जो है वो लगा पाएंगे, तो औरों को लगा सकते हैं। तो डी आप इस्तेमाल करना है, और डी स्किन फेस वॉश अगर आया है जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज कर स्किन को हाइड्रेट भी रखता है, तो जल्दी से आप सारे लोग जो है वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये इतना आप लोगों को जो ना अच्छी वाली वाइब देगा, और अच्छा वाला ये एक प्रोडक्ट है जो कि क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और इसे आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के लड़कियां और टीनेजर्स हैं, एजेड हैं, सारे लोग इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते। स्किन फेस वॉश इनके लगाने के तरीकेकार भी जरा से आप लोगों को समझा देते हैं, वैसे इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है, वॉश इस्तेमाल करते हैं या क्रीम लगाते हैं बिल्कुल सेम ही तरीकेकार है, लेकिन ऐसा सीन है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना उनकी थोड़ी सी एक आदत होती है कि अगर वो फेस वॉश हो या फिर साबुन हो उसका इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं, तो एक मर्तबा जब आप सुबह को अपना फेस वॉश करते हैं तो आपने साबुन का यूज जो कर रहे होते हैं तो वो 3 से 4 मर्तबा भी आप साबुन लगा लेते हैं, फेस वॉश का यूज कर लेते हैं, बार बार आप जो है ना वो फेस वॉश लगा रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, उसको फेस वॉश किया दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, यानी कि सारा दिन बस आपका ये जो ना फेस वॉश करने में निकल जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे, अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं ना तो ये चीज भी आपकी ना कि भाई अगर आप साफ सफाई में अच्छी लगती है इतनी ज्यादा अगर जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिमिट में अच्छी लगती हैं, और अगर आप फेस वॉश भी अपना बहुत ज्यादा करते हैं या एक मर्तबा आप अपना फेस वॉश करने जाते हैं सुबह को, जैसे आप फर्ज करें फेस वॉश किया तो उसमें आपने जो है ना वो फेस वॉश का यूज किया तो 4 से 5 मर्तबा लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं बार, तो ये भी आप थोड़ा अवॉइड किया करें, 1 से 2 मर्तबा आपका जो फेस है ना वो क्लीन हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 मर्तबा जो है ना वो साबुन का या फेस वॉश का यूज किया करें, 3 से 6 मर्तबा लगातार आप फेस वॉश मत किया करें इतना ज्यादा, अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो आपकी इस ऑयल्स होते जाते हैं, जब आपके चेहरे पर नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं तब आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इन चीजों को आप अवॉइड करते हैं, इन चीजों को आप ध्यान में नहीं रखते तब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रखिए, और साथ साथ ख्याल भी उतना रखिए जब रखना चाहिए जितना, ऐसा नहीं है कि भाई आपने लगातार बस फेस वॉश करते रहना है, आप ये सोचे कि हम तो अपने आप को क्लीन, इस तरह का क्लीन भी नहीं बढ़ जाए उसके ऊपर। तो अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि डी स्किन फेस वॉश जो है वो सुबह को इस्तेमाल कीजिए, दोपहर को और रात के टाइम, क्योंकि रोज होता ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में भी थोड़ा सा आपका फेस वॉश स्किप हो जाता है तो रात का फेस वॉश कभी भी स्किप मत किया करें, वो जरूरी किया करें, क्योंकि रात अगर आप फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो चेहरे पर बहुत ज्यादा डस्ट होता है, पोल्यूशन होती है, गंदगी जो जमा हो जाती है पूरे दिन भर की, तो वो रह जाती है, और जब रह जाती है तो

पर जब आप सोते हैं तो आपके चेहरे पर जो ना एकनी बनना स्टार्ट हो जाती है, निशानात पर जाते हैं और ऐसे निशान बन जाते हैं जो भाई कभी नहीं जाते। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सीन नहीं चाहते तो रात को अपना फेस वॉश लाजमी करके सोएं और डी स्किन फेस वॉश लगाएं, या फिर आपने वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करना है तो फेस वॉश करने की ब्यूटी क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये तरीकेकार अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं

ऐसी ट्रिपल कोशिश किया कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, और यहाँ पर आई लव यू सो मच दोस्त माँ फरमाइश के बहन सिद्रा मुस्कान को भी खुश आमदी दिन मास्टर मंजूर सुनेंगे साथ जतोई अब जतोई अली मुगल भाई मीरपुर खास से कहते अधिक रात अच्छा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया और मुनव्वर भाई कहते हैं कि हम उस ही गर्मी में सही साथ हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हो मेरा चन्ना का वाइट एश ब्यूटी क्रीम माल कर रहे हैं बहुत बढ़िया पास से अब्दुल सिंह शंबानी है वालेकुम अस्सलाम अति टॉपिक अगले ते डिपेंड करे वही कायदा प्यारे

फहा दे रही है सऊदी शो तव्हांजो नाइस फरमाइश आहे तव्हां फेसबुक ते शेयर कई आहे अच्छा इरम कहती दिल भर आप ही जवाब है मैं तो आपको ही सिलेक्ट करूंगी यार आज मैं भी उदास हूँ बस अल्लाह पाक हम दोनों की उदासी दूर करे आमीन आमीन आमीन वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी शो सुन रहे हैं आपका प्यारा शो थैंक यू वरियाम रसूलाबाद से आबिद हुसैन शम्बानी भाई वालेकुम अस्सलाम अदी ये क्या अच्छा सच में चले अच्छी बात है एंजॉय करें यासीन गुडाड़ो हमारे सारे सकरण से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम असं ठीक आयो उम्मीद आए तमाम भी खुश हुआ और कहते टॉपिक असा दोस्त के चूज कंदासो सिद्रा आज रऊफ मक्सी जो कलाम तो बुधराइंदा प्लीज डेडिकेट बशीर लिगारी चले मां कोशिश क्या थी भा तवांजी फरमाइश भी हलाइंदा नदीम अली है हमारे साथ गोठ

नदीम भा तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, ठीकु आहे, मां कोशिशि कयां थी तव्हांजी पसंदि जेका उहा हलाईंदासीं प्रोग्राम में। और शोनी की धीअ जान में बि आ गई आगे शो में कुझु देरि के बाद में। चलिए जी, क्या बात है, आपकी लाइफ तो मुझे लगता है बड़ी सेट है, यानी घूमना फिरना, इधर आना उधर जाना, ये करना वो करना, क्या बात है भाई। चलिए एंजॉय करें, एंजॉय करें, और बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद जमान लिखते हैं, अल्लाह आपके दिल से वो सारी थकन उतार दे जो आपने किसी को बताए बगैर बर्दाश्त की हुई है। आमीन जी आमीन इंशाल्लाह। और दर्दी दिल कहती है, देखो बस देख ही तो रहे हैं। अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई हमारे साथ है, दादू से वालेकुम अस्सलाम, नाइस यू, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम करते हैं। आदिल भाई आपके बेटे के लिए बहुत ज्यादा वाली दुआएं करेंगे। अच्छा किशोर भाई कहते हैं, डिस ना तुझे भाभी खाए।

लगेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का जो इस्तेमाल कर रही है, अगर आप भी सोने लगना चाहते हैं तो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, आमदीद करते हैं प्यारे भाई को। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम देगी, नकुल देगी आप। और नियाज भुट्टो हमारा शो सुन रहे हैं शिकारपुर से, नियाज भाई आप। अच्छा सरफराज अली सोती हाई आपको भी वेलकम करते हैं जी। ओके जी, सो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए मौजूद है। और यहाँ पर जो है ना हम ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास।

सुनती रहिए इंडी मैसर आई यूं जाकर यू स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई आई चमकदार सिर्फ बिंदी हरे खत्म। पाकिस्तान
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वाइटिश लवली क्रीम लगे तो तव्हांखे कुझु ॾाढी वणी वई आहे. सो वाइटिश लवली क्रीम जेके बि माण्हू हणनि पिया बिल्कुलु वाकई उहे ई चवनि पिया त वाइटिश लवली क्रीम जी तारीफ़ ओ हेॾी सारी कयो त बि घटि आहे. सो वाइटिश लवली क्रीम जेके माण्हू कोन पिया हणनि तव्हां पापा हणी ॾिसो तव्हांखे मज़ो अची वेंदव. छो त हीउ फेयरनेस क्रीम आहे, हिन में को एज लिमिट बि न आहे, तव्हां हर उमिरि में हिनखे इस्तेमालु करे सघो था. हर कोई माण्हू लॻाए सघे थो, मर्द मायूं सभु लॻायो बाबा ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सेट बणायो. छो त वाइटिश लवली क्रीम तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजी लाइफ सेट थी वेंदी. सो वाइटिश लवली क्रीम लॻायो ऐं सोणा सोणा रहो. हुन खां अलावा जेके माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा वञनि पिया, पोस्ट खे तव्हां अञा ताईं लाइक ऐं शेयर नाहे कयो त जल्दी कयो बाबा. हाणे असां प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में पहुची विया आहियूं. ओके, सो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप हमें कहां से ज्वाइन कर रहे हैं. उसके अलावा आप जो है ना वो क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 03-15-799-0595 बुड़ी 315-97-99-90-595. इहो नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से वाइटी जा प्रोडक्ट हुजनि या डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजनि इहे सभु अवेलेबल कराए सघो था. ओके वासव भाई हमारे साथ मौजूद है. वासव भाई आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं आपको. और हैदर अब्बासी कहते हैं मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, शामिल हो गया हूँ, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम करते हैं. नूर चांडियो हमारे साथ ही, वालेकुम असलम नूर चांडियो. और अब्दुल खाले गबोर है, कहते हैं बाजी क्या हाल है भाई, मां ठीक आए, तुम बताओ कि आयो. एसन अली भुक्टी हमारे साथ है.

सिद्धार्थ लोग कहते हैं दी कराची की बिरयानी खाओगी, मैं खा रहा हूँ, खाएं जी खाएं बिरयानी बिरयानी। अच्छा और हमारे साथ हैं जी ये फहीम, कहते हैं कि हमसे रखिएगा तवक्को ना फरिश्तों जैसी, हम तो इंसान हैं औकात पे आ जाते हैं। सही गल है। ओके जी, मोहम्मद समी कहते हैं हम भी आपका शो रोज सुनते हैं, मैं रुखसार मरी का भाई हूँ आपी। ओके ब्रो, आपको वेलकम करते हैं।

फहीम आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही हुआ था। ओके जी, क्या बात है, क्या बात है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए मित्रों। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? टॉपिक दोनों चाहिए। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट लड़कियों को। अरे वाह, गाने तो अच्छे लगा रही है, सच्ची बताए। वैसे हमारे साथ हमारी ये प्यारी फजीला सिंधी मौजूद है, बहुत शुक्रिया फजीला। ओके जी, और हमारे साथ किशोर भाई कहते अदा मंडे जो भले कजो, भले कजो बाबा मोकल तव एंजॉय भी कजो, ठीक जी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव अगर लाड़काने अचो या लाड़काने के आसपास आयो या वैसे या एकड़ी गाल तो कॉमन थी वही है अजकल जिते भी तव रहो था उते तवाजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे। आई अवेलेबल थी तोने लाए तमा थोड़ो कष्ट करे तो तमा अवेलेबल करायो। आई तमा अवेलेबल कराण लाए छा कना, तमा डायल कना 03-15-799-0595 43-15-79-5595। ही नंबर तमा डायल कयो जी तवाजे करीबी जनरल स्टोर से, तवाजे एरिया में, तवाजे गोठ में, तवाजे शहर में, तवाजे पाड़े में, हर जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वने, ठीक है। तो अवेलेबल करायो आई खूबसूरती की वधाईंदा रहो। हिदायतुल्ला कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी ऐसी है, घूमना फिरना, हमारी घर से काम और काम से घर, असां जी भी सेम बाबा सेम। अच्छा वफा, मुमताज अली खोसो हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई। बिलाल अली कहते हैं अब ये अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। ये चीज मैंने पहली बार सुनी, तो इस अफवाह को जरा हाइड कीजिए, लोगों की नजरों में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे। अच्छा दर्दी दिल, आप हमारा शो सुन रही हैं और डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कर रही हैं। चलें जी, कल्ला फरमाइश कीजिएगा अगर आज प्रोग्राम बढ़ गया है तो। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार हमारे साथ मौजूद है, शायद आपके कुछ कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं, तो कहते हैं सिद्धू जी चार दिन से मेरा गाना आप नहीं लगा रही हैं, क्यों? मैंने भैंस चुराई है क्या तुम्हारी? एकड़ी गाल भैंस तो आए कोन असा के, बाकी गानो तवाजो हलाईंदासी बाबा खाड़ी वेंदासी। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारे भाई। अच्छा बिलाल कहते हैं कि सोच समझकर किसी को सजदों में मांगा करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे ही बुलाने के लिए सजदों में रोना पड़ जाए। सही था चो अल्लाह।

वाह वाह अगर एक दफो कें तव दिल डेई छी तो बाबा वापसी जो जो रस्त आ ना वो बंद थी वेंदो आहे और शोनी तवासा सगत मौजूद आहे थैंक यू सो मच एंजॉय कयो बाबा पांजी जिंदगी के और मुनव्वर मुगल भाई कहते मेरी बेटी गाजिया आपको सिंधड़ी आम गिफ्ट भेजना चाहती है तो अदी कैसे भेज सकते हैं नहीं भाईजान बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आप बस मेरे हिस्से के खा लीजिएगा और दुआ करें वैसे आम में थोड़ी खाती भी कम हूँ तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का और हमारे साथ हैं जी इमदाद जतोई भाई इमदाद जतोई और अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई की फैतला जतोई आप हमारा शो सुन रहे हैं सही भाइयों को वेलकम करते हैं और जी हैं हैदर दादू खां हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो बुधरा है जो मास्टर मंजूर हले पयो बाबा बुधो और इमाम डिनो सोलंगी फ्रॉम मटियारी सलामदी गानो बुधरा जो शेनिला गुल जो बिल्कुल भाल आने की कोशिश करनासी टाइम बची हुई तो और ये मौजूद है सलाम आप अच्छा कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत आंधी आई है फ्री में मेकअप हो रहा है और सब आ जाओ 78 मोरी मिरपुर खासे राजा हमीरचंद किशोर कुमार और हीरा लाल फौजी सवाई लाल प्ले करें जी मुखे कुठई जानी चले टाइम तो खैर अज खत्म थी चुको आ वरी ताजो गानो बुधी वठना सी सो एंजॉय कयो बाबा फ्री वारो मेकअप पर अगर तुम वाकई खूबसूरती हासिल करना चाहते तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो पव सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने तवाजी खूबसूरती वधी वेंदी बाबा चांस सफा वधी वेंदव खूबसूरती का सो खूबसूरती वधने सा गडो गड तवाजी स्किन घनी सेंसिटिव आए ना खोड़ मानो जी स्किन सेंसिटिव हुंदी आहे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तवा सेंसिटिव स्किन वारा मानो भी लगाए सगो था जो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार थियल आहे हन जे अंदर कोई भी केमिकल ना ही सफा टिप टॉप तरीके से तैयार थी वही है सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाओ ना अगर तुम डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमाल करो जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट रखो है क्लीन रखो है मॉइस्चराइज रखो है सो खूबसूरती तुम हासिल कदा जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कदा

मौलाई मुजाहिद बोजार तव्हांजा कुझु कॉमेंट उपर हलिया विया सो हुन जे लाइ माज़रत कयूं था. नूर शानियो कहते वाह क्या सॉन्ग है दिल्ली जी वधी वई धक धक वणियो हूंदो तव्हांखे अलाए कहिड़े भाउ जी फरमाइशी सो मूं सटक करे लॻाए छॾियो लिस्ट में. न बाबा तव्हां सिंगार भले न कयो, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, डी स्किन जो फेस वॉश लॻायो ऐं साण तव्हां वाइट एश लवली क्रीम लॻायो बस बाबा. सफ़ा ईअं कम जेको आहे वी आई पी थी वेंदो सो तव्हां लाज़मी इस्तेमाल करे ॾिसजो.

समी थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। बिलाल कहते हैं कि जेको सा का वधिक प्यारो हुंदो आए अक्सर दर्द तकलीफ उन माई मिलंदा आए। बिल्कुल सही था जो मामा जवान कहते हैं हम आइसक्रीम भेजेंगे तो रास्ते में पिघल जाएंगे इसीलिए समझ गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल दुख में भी खिलंदा कयो जी असा खिलंदा आयो दुख में भी बस दसी ना तो थोड़ो उदास आयो बाकी बटरी जगह वो निकल ही होंगी है।

0: छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार ब बेड़ा ईरान वेझो मुकर कर छ्या। यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर वो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा वी का जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बकाई है तो ईरानी फौज के दुश्मन की चुरपुर नजर है। फौज मुल्की सलामती आवाम के तहफुज के यकीनी बनाए रही है। ईरानी कौम के पांजी फौज से फख्र है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प से राबतो बितरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से गालियों। बिन्हीं अगवाणन अमरीका ईरान विच में हलंदड़ गालन जो भी जायजो वरतो। बिन्हीं अगवाणन बहरी रस्तन की हिफाजत आजाद चुरपुर खिते की सिक्योरिटी के हथी डेण वाल कोशिशों से भी जोर भर। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में तकरारों तां ब जणा कतल। प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो एक जणो कतल थी वयो एक जख्मी। गोठ गहणो कलोड़ो में जमीनी तकरार तां धुरन में झेड़ो थी पयो। गोलियों लगण के नतीजे में रहीम बख्श कलोड़ो मारजी वयो एक जख्मी थी पयो। दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश त। नौजवान इम्तियाज लाशारी जो गोली लगल लाश गोठ वेझो जमीन तां मिलियो। पुलिस कतल शक हेठ टिन जणन के हिरासत में वठी छड़ियो। पुछा गाछा जारी। जैकबाबाद के गोठ वली मोहम्मद बहन में कारा इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल। जवाबदार सदाम बहन नौजवान भाइटी रेहाना के कारा इल्जाम हेठ कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वयो। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वयो आहे। संदस गिरफ्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। छहन महीनन का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू जारी। सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ाइच जीएम कोराई असदुल्ला शाह आमो सामो। नायब सदर के उहदे ते आमिर शहजाद अहमान इरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान नजीर शर में मुकाबलो। पहरों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में ज़रई पानी की खोट खिलाफ आबादगार जो एहतजाज। टंडो गुलाम हैदर में पानी खोट खिलाफ आबादगार बदीन रोड से धरणो हो। मुबारकपुर के मूसा अलाहाबाद शाख में भी पानी खोट खिलाफ आबादगार जो मुजाहरो। निंदो में कढ़ण सब डिवीजन के वाहन में पानी खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज कयो। पानी फराहम करने जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में हारण हणण गाड़ी के क्रॉस करण ता पोरत के तशद्दुद जो निशानो बढ़ाईंदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल। वडेरे हाजी खान मार मथा सरकारी फिराद ते केस दाखिल कयो वयो। पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में नाकाम। गाड़ी के हारण डियण क्रॉस करण ते वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद्दुद करे गाड़ी सा गेलियो हो। वडेरे हाजी महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरत खेस माफ भी कयो हो। मीरपुर माथेलो की अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाने ते वडेरे मथा केस दाखिल कयो वयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अपना पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: लिखे टुकड़ों से जुड़ी
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: GFM 88 Network
1: सिंध की आवाज।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान में फोर्सेस जो ऑपरेशन शोबान जारी, वधीक नव खारजी दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन शोबान दौरान मारजी वियल खारजी दहशत सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाक फ़ौज, एफ़ सी ऐं पुलिस जो है ताज़नि

0: हज़ारें बोरियूं हथ बान सईदाबाद में मुख़्तलिफ़ गोदामनि ते छापा गैर कानूनी तौर ज़खीरो कयल कणक जूं पंज सील कया विया। खोड़ा में बि 10 गोदाम सील कया विया। मदेजी में बि कणक जे गोदामनि ते छापा, केतिरा ई गोदाम ऐं दुकान सील। कणक जो ज़खीरो कयल हज़ारें बोरियूं हथ। शदादकोट ऐं सेठारजा में बि अमलदारनि जा गोदामनि ते छापा, कणक जूं हज़ारें बोरियूं हथ। सांगण में
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786
3: GAFM रेडियो
4: सिंध जो आवाज़।

0: घणा मुठा केसिस त उते हू उन जा वॉलेट्स मां पैसा बि कढी वठंदा आहिनि या खणी वठंदा आहिनि, त तव्हां छा उन्हनि जी चार्ज वार्ज थी
1: क्रिमिनल ब्रीच में नथा अचनि? उहे चवनि था मिस अप्रोप्रिएशन में। मिस अप्रोप्रिएशन जो मां कॉन्सेप्ट वन सेकेंड तव्हांखे क्लियर कयां। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरी शइ हैंड ओवर थिए थी पई, बदलीअ थी बाद में थी पैदा थिए। मिस अप्रोप्रिएशन में शइ मिले थी पई या कोई असांखे ॾिए थो पियो, पर इंटेंशन
0: डिसऑनेस्टी
1: बाद में जेकी डिसऑनेस्टी जेकी पैदा थिए थी उहा लेटर ऑन पैदा थिए थी। इनिशियल उनजो को न हूंदो आहे, इंटेंशन न हूंदो आहे त मां हीअ शइ मिस अप्रोप्रिएट कयां या हिन अमानत में खयानत कयां। जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त अगरि को डिसीज कुराड़ो आहे, अगरि को गुज़ारे थो वञे या को विल लिखाए थो वञे, हाणे विल में हुनखे ॿुधायो थो वञे मुंहिंजी 200 एकड़ ज़मीन आहे, मुंहिंजे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई वञे। लेटर ऑन अगरि उहो विल खे एग्ज़ीक्यूट करण वारो उन में सिर्फ़ हेर फेर करे छॾे त न 200 एकड़ मां 10 एकड़ जेकी ज़मीन आहे उहा मुंहिंजी बि आहे, त डेट जेको पॉइंट आहे जाते हो मिस्ट्रस्ट क्रिएट थो थिए, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टू डिफरेंस थिंग्स।
0: हां समझियो, जी मतलब कहते ट्रस्ट हूं तो जारी गाला तो अमानत भी उनके ही देनी मरदी
1: है। अमानत भी उनके
0: वो ट्रस्ट जो अगर गलत
1: इस्तेमाल
0: लगा करे पियो तो वो जो कहते
1: क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन, दीस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स।
0: अच्छा शबा साहब, अचूं पिया इन जे पीपीसी सेक्शन 407 में हवालो ॾिनो वियो आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एक्सेट्रा। कीअं पिया ॾिसो हिन खे काई शइ कंहिंखे मतिलब मिले पई कंहिंखे पहुचाइण जे लाइ उन में विच में हू ख़यानत पियो करे, या वेयर हाउस कीपर्स थी विया या बिज़नेसमैन थी विया कंहिंखे अगरि पोयां हैंड ओवर करे वञनि पिया पंहिंजो बिज़नेस ऐं उन में हू ख़यानत करे उन जूं शयूं मिस यूज़ करे, उन ते थोरो
1: मां हिन खे ईअं चवंदुमि। जीअं तव्हां कोई बि कोरियर सर्विस कयो, चाहे उहो गवर्नमेंट हुजे चाहे उहो प्राइवेट हुजे, तव्हां कोई कोरियर सर्विस जे थ्रू तव्हां पंहिंजो कीमती सामान मोकिलींदा या ऑनलाइन ज़रिए अगरि तव्हां ऑर्डर था कयो त उहो ऑनलाइन जे ज़रिए तव्हांजे घर सामान पुॼंदो अचे। सपोज़ तव्हां मोबाइल ऑर्डर कयो आहे, मोबाइल ऑर्डर करण जे टाइम जॾहिं तव्हां हिते पुॻो त मोबाइल तव्हांखे डॿो त मिलियो पर मोबाइल न मिलियो, उहो विच में जेको मोबाइल गुम थी वियो,
0: इहो
1: बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हिकिड़ो फनी मां तव्हांखे ॿुधायां, जीअं सपोज हूंदो त न हूंदो त न, जीअं असां वटि हाणे फूड सर्विसिस हले थी पई, सपोज कोई फूड सर्विस जे दौरान कोई हिकिड़ो ऑर्डर थो करे छॾे ऐं ऑर्डर जे दौरान घर ताईं पुॼंदे पुॼंदे हिकिड़ो ऑर्डर गुम थो थी वञे, ठीकु आहे, त उहो जेको ऑर्डर जो गुम थियण या ऑर्डर खे ॿी कई जॻह ते डिलीवर करणु, पैसा पूरा वठी छॾनि, उहो जेको हुन विच में जेको मिस अप्रोप्रिएशन थिए थी, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: अच्छा हिन ते ईअं बि अक्सर थींदो आहे शेवा साहब, त स्पेशली असां काई शइ कॾहिं कॾहिं काई बि शइ खाइण वारी घुराईंदा आहियूं त जेको
1: पूरो अवेलेबल
0: ईंदो आहे रस्ते में,
1: सामान अवेलेबल न हूंदो आहे, या हुनखे सपोज हाणे हिकिड़ी बिरयानी जो पैकेट आहे, अगरि 10 चमचा हुन हणी छॾिया त असां हुनखां न पुछंदासीं त छा आहे, पर ॾिठो वञे त उहो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करे थो। कोरियर सर्विस मां सपोज कोरियर हाणे असां कोरियर सर्विस जे थ्रू असां पंहिंजा डॉक्यूमेंट्स मोकिलींदा
0: आहियूं,
1: कपिड़ा मोकिलींदा आहियूं, फर्नीचर्स मोकिलींदा आहियूं, कोई बि अहिड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स हुन असां मोकिले छॾंदा आहियूं, ठीकु आहे, अगरि या शूज़ बि मोकिलींदा आहियूं या असां कपिड़ा, अगरि ड्यूरिंग इन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो को सर्विस अगरि हुनखे मिस यूज़ करे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमालु करे छॾे थी, फ्रॉम दैट पॉइंट ही इज़ अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वेयर हाउसिस में ईअं थींदो, सपोज तव्हांजो हाणे हिन साल मून थो ठहे, नारायण ऐं कागान वञण जो, गर्मी बि अचनि थी पियूं ऐं मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हले वेंदो आहे, तव्हां पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे लोकेलिटी में गाॾी बीहारींदव,
0: ओके,
1: त हे मुंहिंजी गाॾी खे तव्हां संभालियो, या पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहारे वेंदव गाॾी त तव्हां खणी था वञो, या अगरि बाय फैमिली तव्हां वञो त ट्रेन जे थ्रू सफ़र कंदव, हाणे तव्हां कंहिं जॻह ते कंहिं गैरेज ते गाॾी बीहारे छॾी, चाबी बि ॾेई छॾी, हाणे हुन शख़्स छा कयो, हुन गाॾीअ खे मुसलसल टैक्सी करे यूज़ करे छॾियो, हुन में तव्हां हुनखे एज़ अ वॉलंटरी हैंड ओवर कई प्रॉपर्टी, त मां हिकिड़ी प्रॉपर टाइम ते या हिकिड़े पर्टिकुलर टाइम ते मां ईंदुमि, तव्हां इहा शइ वठंदुमि, अगरि हिन में जेको बि तव्हांजो जेको हूंदी महिनत हूंदी, आई विल पे टू यू एज पर द कॉन्ट्रेक्ट, जेको मां तव्हांखे चयो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे या इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्ट हूंदो आहे, एज पर हिन कॉन्ट्रेक्ट जे हिसाब सां। पर लेटर ऑन छा कयो, जीअं तव्हां नारायण ऐं कागन जे सफ़र ते निकितो, फ्रॉम नेक्स्ट डे दैट मीन यूज दैट योर प्रॉपर्टी एज अ टैक्सी, या हुनखे कंहिं बि कंहिं सर्विस जे थ्रू हुनखे हलाइणु शुरू करे छॾियो, हुन मां अमाउंट कमाइणु शुरू करे छॾे, तव्हांखे ख़बर ई न, उहो जेको यूज़ेज आहे न फॉर पर्सनल गेन ऐं कंहिंजे पर्सनल लॉज़ जो, दैट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
0: ओके ऐं अक्सर थींदो आहे तव्हां प्राइवेट मुलाज़िम जेके आहिनि प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह उन्हनि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान
1: स्टोरेज हूंदा आहिनि, स्टोरेज हूंदा आहिनि, मिसाल मेडिसिन स्टोरेज हूंदा आहिनि, फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि, मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि, कंप्यूटर स्टोरेज, हाणे कंहिंखे को हज़ार हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो, हाणे हज़ार मां अगरि हू ॿ फोन बि खणी थो छॾे, को मायना त नथा रखनि, हज़ारे फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे, देट इज सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड मिस्ट्रस्ट, उन मिस्ट्रस्ट खे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चवंदो आहे, छोकी अमानत में ख़यानत थिए थी पई, प्रॉपर्टी वॉलंटरली वञे थी, को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर देट थिंग, ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुनखे यूज़ करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ, देट इज कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ओके अच्छा, ही ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण खे सवाल आयो, उन्हनि सवाल खे एफ आई आर कीअं कराइजे अगरि इन केस ई थी वञो, उनजे सवाल खां पहिरां हिकिड़ो सवाल अगरि इहो थिए पियो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या ही क्रिमिनल नेचर आहे, सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी या एफ आई आर जे लाइ जेके आहिनि,
1: तव्हांखे चयुमि के सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा. हिकु त प्रॉपर्टी इज बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड, वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन, ॿी इहो ई आहे त एज पर कॉन्टेक्ट देट इज कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली, के हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट ऑन सर्टन टाइम ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौके ते अची करे ओकेजन ते अची करे, आई विल टेक देट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि, अगरि हुन में अगरि को मिसाल तव्हां हुनजे मथां को ख़र्च कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी, आई विल पे यू, ठीकु आहे, पर उहो छा थो करे उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे. टी पॉइंट इहो आहे त देट पर्सन इज डिस्पोसिंग ऑफ, डिस्पोसिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे, या देट पर्सन इज रिमूविंग यानी कि डिस्ट्रॉय थो करे छॾे, सो उन छा थो करे त वॉलन हुन शइ खे उन पूरे जो पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे उन एज पर लॉ हुनजी वायोलेशन करे थो. त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियल आहे, छोकी प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे, लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे, त हुनखे यूज़ थो करे. हाणे सिविल में छा आहे, सपोज कंहिंखे खां पैसा वरिता, हो पेमेंट त ॾींदो थो अचे, पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे, उन में बदनीयती नाहे, हो कुझु मसलनि जे करे हालातनि जे करे हो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे. हिते छा आहे, हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे, ठीकु आहे, इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल.
0: शहबाज़ साहब, अक्सर थींदो आहे तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हिन प्रैक्टिस में त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे, चवंदो आहे न ॾींदोमांइ पैसा, जेको करणो अथई वञी कर, पोइ बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
1: सिविल थींदो, उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्टेक्ट आहे न, ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट तव्हां हलिया वेंदो होॾे, सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां. हिते छा आहे, हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां, जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न, प्लीज हूंदी आहे, बेलमेंट हूंदी आहे, मॉर्गेज हूंदी आहे, हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि, कॉन्सेप्ट आहिनि इहे बाक़ी बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा, त बेलमेंट में छा थींदो आहे त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न प्रॉपर्टी खे ट्रांसफर थो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ेशन, पोज़ेशन न ॾींदो, सॉरी पोज़ेशन ॾींदो, इंटाइटलमेंट न ॾींदो, मालकी न ॾींदो, मालकी माण्हू वटि ई रहंदी, पोज़ेशन ॾेई छॾंदो, हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां को सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो, हुनजो लुक आफ्टर कंदो. इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां, तव्हां कंहिं माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते, ऐं इहो फाइन बहितरीन क़िस्म जो हे चांवर आहे, ऐं हाणे तव्हां रखाए हलिया वियो, चई मां तव्हांखे सुभाणे इहो खणी वेंदुमि. हाणे माण्हुनि छा कयो त ॾिठो हे चांवर तमामु सुठो, उन मां 1 किलो चांवर खणी करे विकणे छॾी, ऐं पंहिंजो लो क्वालिटी जेको चांवर आहे मिलाए छॾी, उनजी मिसयूज़ आहे न, जेको हुन चांवरनि खे मिसयूज़ करे छॾियो, हुन चांवरनि खे पंहिंजे पर्पज़ लाइ तो गेन कई, विकतई, उन मां हुनखे पैसा मिलिया, वरी पंहिंजो लो क्वालिटी जो चांवर तव्हां सां मिलाए छॾे, और जेको मिलाइण जो जेको जेको फेज़ आहे न, उन फेज़ खे असां चवंदा आहियूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट.
0: ऑल राइट, अक्सर त को ईअं अगरि ॿुधायां वञे चांवर सुठी क्वालिटी वारा हमरा त पचाइण शुरू थी वेंदो,
1: थींदो आहे कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, या त ॾिसो या त
0: हुनजी
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे न, मुंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे टू लुक आफ्टर हिम. असां लाइ मां तव्हांखे छा चयुमि, बेलमेंट जेके चवंदा अमानत तौर रखाराइण, प्लीज बि असां छा चवंदा अमानत तौर रखाराईंदा
0: आहियूं.
1: प्लीज में छा थींदो आहे त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ असां को लोन वठंदा आहियूं कंहिं पर्पज़ जे लाइ, त जॾहिं मां लोन तव्हांखे वापसि करे छॾंदुमि, तव्हां इहा प्रॉपर्टी काइंडली मूंखे हैंड ओवर कंदो, इनके चवंदो अमानत में शुरू में बदनीयत मां वन सेकंड रिपीट थो कयां आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट फॉर द दोस पर्सन जेके असांखे विच में बि अगरि असांखे कंहिं ज्वाइन कयो आहे त हुनखे इहा ख़बर पइजी वेंदी वॉट काइंड ऑफ टॉपिक इज़ बींग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड शख्शबाज़
0: तैयब जो सवाल ते अचूं
1: पिया हाणे मां तैयब जिन सवाल ते ईंदुमि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी मिसाल सपोर चार सौ टे जे अगरि तव्हां डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में वेंदो हुनजी पनिशमेंट ॿ साल आहे ईअं अगरि तव्हां चार सौ टे में ईंदो हुनजी पनिशमेंट टे साल आहे ईअं न अगरि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हुनजी बि टे साल
0: आहे
1: डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज बींग डन तो डिपेंड करे थो लाजमी ॿिनि सालनि खां वठी करे वेंदे ॾह साल ऐं प्लस लाइफ इम्प्रिज़नमेंट ताईं बि हिन जी सज़ा आहे पर अमूमन छा आहे ॾह साल इहो मैजिस्ट्रेट ट्रायल बि आहे इहो सेशन ट्रायल बि आहे
0: ठीक आहे अच्छा हिकु ॿ ॿिया बि असां वटि वॉइस नोट्स आहिनि जेके मां इंक्लूड कयां पियो
2: अस्सलामुअलैकुम सर माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इस मुतलक मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फर्क होता है आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं इसका जवाब दें प्लीज
1: वेरी गुड क्वेश्चन
0: सुठो सवाल कयो आहे अच्छा सवाल किया है ज़ुबैर आपने जी
1: थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बींग आस्क्ड बाय यू चीटिंग Cheating is a kind of deception, it's kind of concealment of the facts for anything. Agar ye samjho ta thagi karan jeke dhoko de कंहिं माण्हू खे यकीन ॾियारण ॾिस माना एतिरो इंड्यूस करे छॾण त जेकी इहा शइ आहे इहा वाकई मुंहिंजी आहे मूंखां तूं ख़रीद कर जॾहिं तूं उहा शइ हुनजी नाहे मिस्ट्रस जो मां तव्हांखे इहो ॿुधायां डिसेप्शन चीटिंग त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ वंस अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट के बदनीयती फ्रॉम द बिगनिंग आहे चीटिंग में जेकी डिसऑनेस्टी आहे उहो शुरू खां
0: ओके
1: ही इज़ इंटेंशन टू डिसीव दैट पर्सन माना बाद में क्रिएट न थियो आहे जेको मेन्सरी आहे जेको एक्सरी आहे जेको मेन्सरी आहे इंटेंशन जेके असां चऊं जेको मेन्सरी आहे उहो स्टार्टिंग में क्रिएटेड आहे ठीकु आहे न लेटर ऑन माण्हू छा थो करे त एक्सरी आहे त हुन सां गॾु आहे पर जेको मिसअप्रोप्रिएशन में जेकी थिए थी उहा मेन्सरी आहे तव्हांजे जेके असां चवंदा बदनीअ थी ॾिए उहा शुरू में न आहे उहा लेटर ऑन क्रिएट थी थिए मूंखे अगरि हिकिड़ो मोबाइल थो मिले रोड ते मां खणी छॾियो माना आई हैव फाउंड दी रियल ओनर मूंखे न आहे ख़बर पर मां हुनजी पब्लिकेशन बि करायां थो मां पाड़े में अनाउंसमेंट बि करायां थो मां लोकलिटी में न्यूज़ बि फैलाए थो छॾां अगरि मुंहिंजो सर्किल आहे मां हुते व्हाट्सएप ते मैसेज बि हलायां थो मां फेसबुक ते हिकड़ी वीडियो बि चाढ़े थो छॾां त हे मोबाइल कंहिंजो आहे अगरि जेको बि रियल ओनर हुजे अचे मूंखां वठे
0: वठी वञे
1: ठीकु आहे हाणे मुंहिंजी लुक आफ्टर कंदुमि केयर कंदुमि पर मोबाइल मूंखे मिलियो मूंखे ख़बर आहे मोबाइल बाबर जो आहे But still I'm not giving that thing to the barber. Natho diyama. I know where is the barber live, what is the location of the barber, in where place, in which place the barber is working. Unki service kya thi. But still that thing I'm using for my own purpose, that thing is called misappropriation. Intention baad mein create hote.
0: Sahi.
1: Cheating mein, cheating mein, shuru mein hi tahanjo intention hi dhoko dena.
0: All right.
1: Thik hai na? That's a difference between cheating and misappropriation.
0: Ekdo bio sawal bhi asamati aaya hai. Program mein shamil kyun pya?
3: Assalamu alaikum sir. My name is Abdul Nisar. जीअं त तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं असां जेको नंढो सवाल हुयो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां अगरि कोई बि माण्हू जेको आहे सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे थो पियो त ज़ाहिर आहे कानून जे मुताबिक़ हुनखे का सज़ा बि ॾिनी वेंदी थोरे हिन बारे में असांखे गाइड कजो त जेको आहे सो उनजी केतिरी सज़ा आहे ऐं असां हुनखे कहिड़े तरीक़े सां सज़ा ॾियाराए सघूं था
1: बहुत कुझु सेम तयब बि साॻियो
2: वेलकम सर आई एम मोहम्मद मेदीशा तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियासीं जीअं त तव्हांजो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां टॉपिक हले पियो हुन में हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जी सज़ा छा आहे इहो ॿुधाइजो थोरो
1: सज़ा हिन जे करे पुछनि था पिया त असांजी इहा सोसाइटी में आम जाम शइ आहे नॉर्मल शइ आहे माना एज़ यूजुअल बेसिस ते थिए थी पई सो कोशिश इहो करनि था त अगरि कोई हुननि सां धोखेबाज़ी करे थो पियो या हुनजी अमानत में खाईंदा हुनखे सज़ा कीअं ॾियारे सो बहितर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
0: आहे धोखेबाज़ी घटि कंदा
1: छोकी ॾिसो न असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस डेट पर्सन या ए बी सी पर्सन अगरि कोई माण्हू क्राइम तो करे न तो इंडिविजुअल से क्राइम न तो करे पूरी सोसाइटी से क्राइम तो करे तो दैट इज द रीजन जदे भी असा क्रिमिनल केसेस में लिखता हूं स्टेट वर्सेस एबीसी माना हन शख्स एक इंसान से क्राइम न किया पूरी रियासत से क्राइम किया क्योंकि रियासत इज द मदर क्योंकि स्टेट होंगी मदर होंगी जो रोल मदर वो हों कि टू प्रोटेक्ट टू फीड एंड टू गिव शेल्टर टू इट्स इंडिजन मू जी पब्लिक आवाम आ उन टई शुहैया कर स्टेट जो कम आ सो ये इंडिविजुअल से क्राइम न हों

0: पूरी स्टेट
1: कराए हूंदो आहे. सो हिकु कॉलर शामिल था करे वठूं देन असां प्रोग्राम खे कंक्लूड कयूं पिया.
2: अगर मां सवाल इहो कंदुमि, अॼु में बि तव्हांखां सवाल कयो तक़रीबन अधु खां सवाइ अमल थी चुको आहे, वरी बि अर्ज़ु कंदासीं
1: जी.
2: हा त इहे जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड रोड ते हले थी,
1: ठीकु आहे,
2: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ी सां थी करे, मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं, ॾाढो बहितर था कनि.
1: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो, इनशाला ताला कार्रवाई थींदी, मंशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी, ठीकु आहे.
2: सरकार मां त माना पकड़ायान बि पर हिते छो अहिड़ो या एस पी को मां हुजनि, मां क्राइम वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ायान जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे. इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो उन्हनि जा अखाणा ॾिसां थो. मूंखे जे माना को तंग न करनि त मां गवर्नमेंट सां वॾी हेल्प कयां.
1: तव्हांखे
3: बेसिकली ही माना वर्किंग एज़ अ सुपर हीरो. अगर कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो आसमान मां खिलाई मकलू हर टाइम सुपरमैन त न
1: ईंदो,
3: जेके असां इमेजिनरी हिकड़ी दुनिया ठाही आयरन मैन, सुपरमैन, मार्वल सीरीज, जेके असां जेके माण्हू हूं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था कयूं था पिया, अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक्ट कयूं था, बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो, चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं.
1: सुपर हीरो
3: तमामु बेहतर आहे. डू अप्रिशिएट हिम के हुननि इहो जेको आहे
1: अक्सर प्रोग्राम में असांखे पॉइंट आउट करायो, ऐं प्रोग्राम जे थ्रू जेको
3: आहे शाउट आउट ॾियणु खपे हिननि खे, वेरी ब्रेवो टू ब्रावो जे लाइ असां कमु कंदा आहियूं तमामु. जीअं हाणे अधे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो
1: आहे.
3: मां आई हेड्स ऑफ देम माना मां सल्यूट पेश कंदुमि, सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे.

0: ॾिननि वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे. मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे ऐं असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन नासिर खां.
1: बिल्कुल शहबाज़ साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे. इलाही शयूं पंहिंजी रहिजी वयूं आहिनि. लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे, इन खां बची सघनि?
0: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन.
1: ओके,
0: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिश कयो त हुनजा आई विटनेस ज़रूरु हुजनि.
1: ऑल राइट,
0: ठीकु आहे. ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे, पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो, एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो. हुननि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि, अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे, तव्हां वटि वीडियो आहे, तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि, तव्हां वटि व्हाट्सएप कॉल्स आहिनि, अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो, मालिकी ॾेखारियो, इहा शइ तव्हांजी आहे. हुन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया. त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिश कयो त तव्हां हुनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां. काइंडली ख़यानत न कजो.
1: अच्छा, हिन ते मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखूं पिया न त हू चवंदा आहिनि हीउ ॿियो आहे, असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं, पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे. इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया, अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि, ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो. जी
0: ॾिसो न, तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो, सवाल जो जवाब बि पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा.
1: अमानत तौर
0: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो, रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमाल करे छॾियो त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे. सुठो लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न सेम प्लेस.
1: सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अलाह हाफ़िज़.
0: थैंक यू वेरी मच.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
2: खुशखबरी, खुशखबरी अमाजे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सक...

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चौबान जारी अजो के डीएम में वधिक 16 दहशतगर्द मारजी विया। 5 जुलाई का पोए ऑपरेशन चौबान ए बेन कार्रवाइयन दौरान मारजी वियल दहशतगर्दन जो मजमू अंक 95 थी वियो। सिक्योरिटी जरियन मुजिब पाक फौज एफसी ए पुलिस जो खारचियन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजियन कार्रवाइयन में 16 खारचियन के जनम पीड़ो किया वियो। खारचियन खिलाफ जमीनी ए फसाई कार्रवाइयों क्यों पे वन 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन चौबान ए बेन ऑपरेशन में 95 दहशतगर्द मारजी विया। करू वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो तो मुल्क में लिखियल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो।

शहीद रहबर जी मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो आहे, पूरो थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई चयो आहे त शहीद अगवाणनि ऐं शहरियुनि जो प्लान वठण जो अहद कयूं था। परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्शी चयो आहे त अमरीका सां मुआहिदो गडि॒यल बुनियादनि ते थी सघे थो। अब्बास राख़्शी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ अमान पहुतलु।

छिकताण में वाद अमरीका जहाज परतार बगड़ा ईरान वेझो मुक़रर करे छॾिया। यूएसएस इब्राहिम ऐं यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश खे ईरान वेझो मुक़रर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा वच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडे॒ही वज़ारत

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ताडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो जीए FM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: करू वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो आहे त मुल्क में लिकियल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी नायब सदर जेडी वेंस पड़ेही वजीर मार्को रूबियो के ईरान से सिफारती राबता गालू जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती ता मिसारण की धमकी भी डिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है त अमरीकी फौज के मुख्य कत्ल करण की सूरत में ईरान के धरती ता मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाय तैयार है। तेहरान के साजिश ताते हटनो पवो। शहीद रेबर की मौत जो प्लान वटण कौम जो मुतालबो है पूरा थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई चयो है त शहीद अगवाणन शहरियन जो प्लान वटण जो अहद कयूं था। परडेही वजीर अब्बास इराक़ची चयो है त अमरीका सां वायदो कडियल बुनियादन ते थी सघे थो। अब्बास इराक़ची मौजूदा सूरत हाल ते गालियुनि लाइ ओमान पहुतल।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: वाली हिन सिंध ते का एड़ी वराण वरे जो सुख्या दुबरा पान में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोबद कड न मरे पंजल थ्यों न परे जैसी जेरा आयो जान में।

सदा शहर सिंध जे निज़ारन ते लिखबो मेहरान जे मौजुन किनारन ते लिखबो पटके अजरक टोपी वारन ते लिखबो हारन मजदूरन मोचारन ते लिखबो होशू हेमू दोदे पारन ते लिखबो मुहन जे दड़े जे आसारन ते लिखबो जिनजो प्यारा सिंध सा तन प्यारन ते लिखबो ओ दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध में HIV केसेस में खतरनाक हद ताईं वाध। रतो देरो ऐं कंबट खां पोइ कराची में CC जी मातहत वलीका अस्पताल HIV पखेड़ जो गढ़ बणिजी वई। वधीक बबाड़ियूं HIV में मुबतला। जा कॉलोनी वासी नव वरियन जी निगरी खे HIV जी तस्दीक। संदसि ब भेणियूं अॻई HIV में वरितल। मेठोविल वारे इलाइक़े में टिन वरियन जी निगरी खे बि HIV हुअण जी तस्दीक थी। वालदेन जो चवण आहे त धीउ जो इलाज वलीका अस्पताल में थियो। तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त HIV पॉज़िटिव आई। वलीका अस्पताल जे 80 ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी वई। 4 मासूम ॿारा HIV सां झेड़ींदे ज़िंदगियूं विञाए चुका। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अॼु वधीक 21 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारिजी वियल ख़ारजी दहशतगर्दनि जो अघु वधी 64 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजिब पाक फ़ौज FC ऐं पुलिस जो ख़ारजियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। ताज़नि कार्रवाईनि में अॼु वधीक 21 ख़ारजियुनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। जबलनि में लिकियल दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फज़ाई कार्रवायूं कयूं पयूं वञनि। 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शबान ऐं ॿियनि कार्रवाईनि में 102 दहशतगर्द मारिजी चुका। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। मोहसिन नक़वी चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी नायब सदर JD वेंस ऐं परडेही वज़ीर मार्को रूबियो खे ईरान सां सिफारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसरण जी धमकी बि ॾिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मूंखे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरती तां मिसरण जो चई छडि॒यो आहे। फ़ौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाइ तयार आहे। तेहरान खे साज़िश तां पोइ ते हटणो पवंदो। शहीद रेपर जी मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो आहे, पूरो थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त शहीद अॻवाननि ऐं शहरियुनि जो प्लान वठण जो अहद कयूं था। परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमरीका सां मुआदो गडि॒यल बुनियादनि ते थी सघे थो। अब्बास अराग़ची मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ उमान पहुतल। छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज परतार ब बेड़ा ईरान वेझो मुक़रर करे छॾिया। USS अब्राहम ऐं USS जॉर्ज WH बुश खे ईरान वेझो मुक़रर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकरी चयो आहे त ईरानी फ़ौज दुश्मन जी चुर पुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फ़ौज ते फ़ख्र आहे। ईरान अमरीकी हमलनि में 17 शहरियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जी सिहत वारी वज़ारत मूजिब अमरीकी हमलनि में शहीद थींदड़नि में 1 औरत बि शामिल आहे। 8 जुलाई ते अमरीकी हमलनि में 115 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला कया हुआ। नायब वज़ीर आज़म साकटार जो सऊदी अरब जे परडेही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फोन ते राब्तो। हिते जी सूरतहाल, अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ऐं ईरान जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। नायब वज़ीर आज़म साकटार जो मालदीव जे परडेही वज़ीर सां बि फोन ते राब्तो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: वाली हिन सिंध ते का एड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पाण में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोहब्बत कड न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरा आयो जान में।

निज़ारनि ते लिखबो, मेहराण जे मौजुनि किनारनि ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारनि ते लिखबो, हारनि मज़दूरनि मोचारनि ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारनि ते लिखबो, मुंहनि जे दड़े जे आसारनि ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारनि ते लिखबो, ओ दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो, दीदार देस वारनि दुलारनि ते लिखबो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: कर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

कराची बार एसोसिएशन के चूंडन में आमिर नवाज वड़ाइच मैदान मारे वरतो। आमिर नवाज वड़ाइच 2063 वोट खणी सदर चूंडी वो। जीएम कोराई 648 वोट खणी सको। अजीज गोरी 893 वोट खणी नायब सदर चूंडी वो। अरशद शेर 1370 वोट खणी कराची बार एसोसिएशन जो सेक्रेटरी थी वो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।